0: चल के रहा
1: क्या बोले
0: चल के
1: का?
0: चल गया
1: का?
0: चल के
2: beda masa satu rasa sukun spesial baru.